आई लो तो फन आए के जाबी रे हेसे हेसे जाबो बेसे मदीना नगरी दुरी आई लो तो फन आए के जाबी।